एक साहब मिले। मिलते ही वो कहने लगे, ओह माय डार्लिंग आई लव यू। मैं बोली, पर मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। तो हंस के बोले, वैसे मैंने भी आपको कहां देखा है, मैंने तो आपके बैंक बैलेंस को देखा है मैडम, क्योंकि मैं बैंक मैनेजर हूँ।

उस दिन एक मजनू मिले। मिलते ही वो कहने लगे, पाने को तेरा प्यार, कर सकता हूँ समंदर पार, जो तूने किया इनकार, तो हो जाएगा बंटाधार, जान दे दूंगा, जहर खा लूंगा। मैं डर गई, हाँ कर गई। मैं बोली, अभी चलो मेरे डैडी से मिलो। तो वो बोले, अभी अभी कहाँ, बाहर बारिश हो रही है, मैं भीगा और मुझे जुकाम हो गया तो।